So that was not that long. Okay, but this is what I was saying, that जो गाने हैं मुझे पता है कि कैसे चल रहे हैं और क्या चल रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मतलब इसके अलावा और क्या चल रहा है. तो मुझे तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज थी कि आज मैं क्या चलाऊंगी गानों के हिसाब से. लेकिन बात करते हैं कि आजकल क्या चल रहा है हालात हाजरा के बारे में. और हालात हाजरा में जो सबसे आजकल प्रोमिनेंट चीज़ चल रही है वो ऑब्वियसली जंग के बारे में है कि क्या सीन है, अमेरिका क्या कर रहा है, गल्फ़ क्या कर रहा है, उसमें पाकिस्तान का रोल कहाँ से आ गया इतना अजीब सा. तो इट इज़ इंटरेस्टिंग जिस तरह चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, बट मज़ा तो आ रहा है. एंड आई जस्ट रियली होप विश एंड प्रे कि जितनी देर ये लोग लगे हुए हैं बातें करने उतनी देर लोग तो कम अज़ कम सुकून से हैं. बिकॉज अभी कुछ वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही केम फ्राम सिंगापुर और वो दोहा के ज़रिए दोहा के रास्ते आए नहीं, वॉज लाइक एवरीथिंग वॉज फाइन. तो द गुड थिंग इज़ कि क्योंकि ये लोग आपस में बातें लगे हुए हैं तो कम अज़ कम हम लोगों के पास टाइम है कि हम लोग सुकून का सांस ले सकते हैं. बट फिर वो जो हालात इस टाइम पर गल्फ़ में काम करने वालों के हैं वो मुश्किल है, बिकॉज़ वहाँ पर बहुत इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं और इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल है वो ऑब्वियसली इधर उधर से इंपोर्ट किया जाता है. और अगर समुद्री रास्ते नहीं चल रहे तो ऑब्वियसली जो शिप्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, तो रॉ मटेरियल आ नहीं सकता और फिक्स जो प्रोडक्ट्स बने हुए हैं वो कहीं जा नहीं सकते. तो इस तरह की एक चीज़ तो है मतलब. और लोगों के ज़्यादातर हालात ये हैं कि हम लोगों का बहुत से लोगों का पे टू पे आप लोगों का महीना चलता है, तो वो भी एक चीज़ है कि बंदे को बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि यू नो या हालात ख़राब हैं, लेकिन कम अज़ कम ऐसा लग रहा है कि बेहतरी आ रही है थोड़ी बहुत. एंड आई जस्ट रियली होप विश एंड प्रे कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं और ये नहीं है कि बस या सब कि एक साथ लुटिया ले डूबे हैं. एंड ये लेकिन पाकिस्तान का इसके अंदर रोल जो हम लोग मैं एक चीज़ डिस्कस कर रही थी अपने जो सर्कल है उसके साथ, दैट बीइंग अ पाकिस्तानी आई नो दैट पाकिस्तानी जब बटरिंग पे आते हैं तो वो कुछ और नेक्स्ट लेवल ऑफ बटरिंग है. वो एक नॉर्मल बटरिंग नहीं है जो आप अपने ऑफिस के साथ करते हो, ऑफिस मतलब अपने बॉस के साथ करते हो. दिस इज़ सम नेक्स्ट लेवल बटरिंग. और उसके अंदर वो दोनों साइडों को इस तरह से जी जनाब कर कर चीज़ें जो हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आपको खुद समझ नहीं आती कि भाई हमारे साथ हुआ क्या है. तो दिस इज़ समथिंग दैट आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि ये एक्चुअली पाकिस्तानी बात सॉल्व करा सकते हैं, बिकॉज दोनों साइडों पर ये अपना आप करते रहते हैं कि आप जनाब आप अच्छे हैं आप अच्छे हैं, और इस तरह से किसी ना किसी तरह दे विल गेट अ गुड वे आउट होपफुली. लेकिन आई जस्ट होप विश एंड प्रे कि जल्दी से जल्दी हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएँ और चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होने की तरफ जाएँ. तो लेट्स सी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह. इसके अलावा लास्ट टाइम मैं अपना सेंडिंग सुन रही थी एंड आई वाज लाइक हैं व्हाई इज़ दिस बीच में क्यों आवाज़ें क्यों आ रही हैं. और हुआ ये कि क्योंकि मैं सारा टाइम बोल रही थी लेकिन मैंने मेरा जो माइक है वो ऑफ नहीं किया हुआ था, वो पीछे खुस खुस खुस खुस खुस की आवाज़ें आ रही थी विच वॉज़ वेरी ऑकवर्ड. और वो ऑब्वियसली ऑन एयर भी हो गया, तो अगर आप लोगों को पीछे से खुस खुस खुस की बातें आवाज़ें आ रही थी तो इट वॉज़ बिकॉज मैं माइक अपना ऑफ करना भूल गई थी. मतलब दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स आप 10 साल एक सेंडिंग करने के बाद भी आपकी ऐसी 10 मिस्टेक्स हो रही हैं तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर क्या कर सकते हैं. तो इसी नोट के साथ आई एम गोइंग टू प्ले अ सॉन्ग, आप लोग सुनिए और इन्जॉय कीजिए. आई डोंट नो कि आपको कैसा लगेगा, बट मुझे भी नहीं पता कि मुझे कैसा लगेगा. तो दोनों साथ में मिलके देखते हैं और देखते हैं कि शायद क्या चीज़ है. ठीक है, हियर वी गो.

तो हम लोग आ गए हैं वापस, और गाना जो है वो था रहनुमा, और आई थिंक वरुण धवन की कोई मूवी आ रही है, इसका नाम क्या है, वरुण धवन की नई मूवी का नाम क्या है, आई डोंट नो, मुझे सर्च करना पड़ेगा. न्यू मूवी, लेट्स सी. रहनुमा वॉज द सॉन्ग, और द है जवानी तो इश्क होना है, है जवानी तो इश्क होना है. मतलब सीरियसली, आई एम सच अ 90s किड. मतलब आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग वरुण डेविड धवन्स मूवीज, एंड दैट यूज टू बी माई फेवरेट जॉनरा, बिकॉज आई डोंट नो, बट मुझे बहुत पसंद होती थी मूवीज़. एंड जब मैंने, और मुझे समहाउ लगता था दैट सलमान खान एंड गोविंदा वर परफेक्ट फॉर डेविड धवन स्टाइल ऑफ मूवीज़. एंड देन अभी मैं वरुण धवन को जब देखती हूँ तो मुझे लगता है दैट वरुण धवन मेड अ किड who's like mixture of Govinda and Salman Khan. So, matlab, this is my thinking hai, okay? आप लोगों को इसके साथ कोई करने की ज़रूरत नहीं है, अग्री. बट मुझे ऐसा लगता है दैट वरुण धवन जो है वो डांस कर सकता है गोविंदा की तरह, और सिली हरकतें करता कर सकता है गोविंदा की तरह, और उसकी बिल्ड शिल्ड है सलमान खान की तरह, एंड ही कैन डू सीरियस रोल्स एज वेल. तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है दैट या ही इज़ एग्जैक्टली हाउ अ डेविड धवन हीरो should be. लेकिन somehow movies कभी hit नहीं हुई हैं, because the last movie I think जो मैंने देखी थी कूली something, जो गोविंदा की movie थी और उसके अंदर सारा भी थी, मुझे ऐसा लगता है that movies same हैं, और इनको वो जब आजकल के scenario में remake करते हैं तो उस time पर जो चीज़ें, जैसे for example उस time पर mobiles वगैरह इतने आम नहीं होते थे, इस time पर mobiles इतने आम हो चुके हैं, सब लोग इतना contact में रहते हैं एक दूसरे के साथ कि ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई information मिस हो गई, यू नो. जैसे कूली नंबर वन में वो ये था कि जी वो उसकी दो बीवियाँ होती हैं और वो एक गांव में होती है एक शहर में होती है, दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, जो कि आजकल के दौर, या फिर वो कोई काम करता है या कुछ इस तरह की चीज़ होती है जो आजकल की सिचुएशन सिनेरियोज में फिट नहीं बैठता मुझे लगता है. तो अब ये वाली देखते हैं मूवी किस तरह की होगी, बट या विल सी. लेकिन मुझे, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू डेविड धवन्स मूवीज़. जब हम मूवीज़ की बात करें तो नॉट टू फॉरगेट के पाकिस्तानी ड्रामे भी कम नहीं है, एंड आजकल आई वॉज फॉलोइंग अ ड्रामा दैट इज़ कुबरा का, दैट डॉक्टर बहू, एंड आई रियली लाइक द ड्रामा. मतलब मुझे ऐसा लगता है दैट एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी सोसाइटी में होता है, दैट यू वॉन्ट अ पढ़ी लिखी बहू, पर जब वो काम करने जाती है और उस एक पढ़ी लिखी बहू के साथ में जो असरात मुरतब होते हैं उनके लिए आप तैयार नहीं होते. सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव लाइक एन एजुकेटेड पर्सन इन योर फैमिली, बट वंस दे आर देयर, दे आर नॉट द ओल्ड अंकल्स एंड आंटीज आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एन एजुकेटेड पर्सन, बिकॉज शी इज़ गोइंग टू बी इनलाइटेंड, शी विल हैव अदर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स जो आप से करते आ रहे हो, शी इज़ नॉट गोइंग टू कम्प्लीटली फॉलो the rituals you've been following since forever. So there is a difference when a girl comes to your house, and in that drama you can actually see how our society is so two-faced and double-faced, and they're like, they want to have all, they want to show everything that sab kuch acha hai, but on the other side they want that khane pakane wali bahuen as well. So that's something that you can see very clearly in that drama. और मुझे वो बहुत पसंद था, तो इसलिए मैंने कहा कि अभी अगर आप लोगों को ड्रामा देखना है, डॉक्टर बहू इज़ फॉर यू. द बॉय इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट, या पी एस. सो या इसी नोट के साथ टीजर है, लेकिन आई थिंक गाना आई थिंक फुल गाना है, या आई डोंट नो, बट देखते हैं. है जवानी तो इश्क होना है का ही गाना है, एंड हियर वी गो.

0: So, not bad. But this is what I was saying, na, ke, the Varun Dhawan style of and David Dhawan style of songs is very different and very catchy. And matlab aap wo sunte ho to aap us era mein chale jaate ho. Wo exactly 90s era hai, and with remix songs kind of energy. So, not bad. I am looking forward to it. Dekhte hain kya hota hai. Aur iske saath saath, I think... Sorry. There is one more thing that I was thinking about. That was Diljit's movie. That's like, it's an upcoming Diljit's movie. And I was thinking ke, kaun, matlab ye, mujhe yaad nahi aa raha. But it is Diljit's movie, and it is with kya naam hai? Imtiaz Ali. Yeah, it is with Imtiaz Ali, and I am looking forward to that movie. And mujhe uske baare mein exactly nahi pata hai, but I think it is the ek koi movie aa rahi hai Diljit aur Imtiaz ki. And matlab I am a big Diljit fan, and Imtiaz also. Mujhe aise lagta hai ki Diljit jo hai wo bahut natural acting karta hai, aur Imtiaz jo hai wo bahut hi literary direction karta hai. Matlab Imtiaz Ali ki directed movies jab aap dekhte ho, jaise meri favorite all time favorite movie is Laila Majnu, and the transition is par mein maine I think pehle bhi baat ki hui hai koi, lekin mujhe aisa lagta hai ki dil Laila जो है उसका तो चलो जो भी रोल था वो था ही, लेकिन जो मजनू की ट्रांजिशन थी इनटू लाइक जो कैस की ट्रांजिशन थी इनटू मजनू, वो जितनी अच्छी इम्तियाज़ ने पोर्ट्रे की है, मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर आज तक किसी ने भी की है. बिकॉज ऑब्वियसली बहुत दफ़ा बन चुकी है लैला मजनू, और एक्टिंग ऋषि कपूर की जो लैला मजनू थी वो मैंने देखी हुई है, द एक्टिंग वॉज सुपर्ब. सो उस टाइम पर भी मुझे लगता था कि ओ माय गॉड, इससे अच्छा इमोशनल एस्पेक्ट नहीं ऐड किया जा सकता. बट अभी के हालात में देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है दैट जो ट्रांजिशन, जो डायरेक्शन, जो स्क्रीन प्ले इम्तियाज़ ने कर दिया था न्यू लैला मजनू में, वो इट कैन नॉट बी रीमेड. एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे हमेशा वो बहुत इंट्रीगिंग लगता है जब कैस जो है वो अपने फ्रेंड के साथ दूर जंगलों में जाता है, और वो उसका फ्रेंड सिर्फ उसको इसलिए जंगलों में लेके जाता है बिकॉज उसको लगता है कि वो किसी अच्छी जगह पे, सूदिंग जगह पे थोड़ी देर अलग बैठेगा तो उसका थोड़ा सा मतलब ध्यान बढ़ जाए शायद, और वो लैला के बारे में उतना ज़्यादा ना सोचे, या फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम मिल जाएगा उसको. हालाँकि उल्टा होता है, वो वहाँ पर जाता है और उसको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है इस चीज़ के बारे में सोचने के लिए, और वो रोज़ाना कम से कम बोलना शुरू हो जाता है, और एक टाइम आता है जब वो बिल्कुल भी बात नहीं करता और फ्रेंड्स के साथ, और वो सिर्फ अपना जंगलों में रहता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो जंगलों में बातें करने लग जाता है. द ट्रांजिशन इज़ गोल्ड, सीरियसली. तो अगर आपने लैला मजनू नहीं देखी है तो क्या कर रहे हैं आप? मतलब लैला मजनू देखिए एंड एंड तक देखिए, बिकॉज एंड बहुत इंपॉर्टेंट है. तो yeah, it has to be hands down one of my favorite movies. उसके बाद तमाशा मुझे बहुत पसंद है. तो तमाशा के अंदर भी जो transition है वो मतलब different है भाई साहब. तो इसलिए मुझे हमेशा लगता था that Diljit and Imtiaz is like such a good combo. Yeah, this is it is, आई डोंट नो क्या कमाल है ये तो गाना है. ठीक है, मैं वापस आऊँगा. ओके, मैं वापस आऊँगा इज़ द नेम, एंड इट्स लाइक काइंड ऑफ बायोपिक आई गेस. बट हम लोग गाना सुनते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं ताकि हम लोग कुछ समझ सकें कि ये क्या है. बिकॉज जैसे मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया, मैं ख़ुद भी ये सब चीज़ें पहली दफ़ा भी देख रही होती हूँ, तो मैं आपके साथ सब डिस्कवर कर रही होती हूँ. तो लेट्स सी द सॉन्ग, सुनते हैं. और ए आर रहमान का म्यूज़िक है भाई साहब, मतलब भाई साहब.
1: वाह, के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है,

Oh God. The end was dramatic. Wow. But I really like the music also. Like the parts where he's just singing alone without any music. Like it's very, very interesting. Yeah. बहुत वो ऐसे दिल पे लगने वाला उन्होंने अब बनाया है गाना. मतलब अब एक दो दफ़ा सुनोगे तो आप उसी के अंदर घूम जाओगे. तो वो वाले काइंड ऑफ म्यूज़िक है विच इज़ ऑब्वियसली गुड इंटरेस्टिंग. या और मूवी भी बहुत थोड़ी इमोशनल लग रही है. बट दिस जॉनरा इज़ टिपिकल इम्तियाज़ अली जॉनरा, जिसके अंदर वो पुरानी चीज़ों को नए दौर से जो है वो कनेक्ट करता है. और या इट इज़ इंटरेस्टिंग. आई रियली लाइक्ड इट. एंड ऑब्वियसली दिलजीत एंड देन नसीरुद्दीन शाह इज़ द ही इज़ प्लेइंग ओल्ड दिलजीत एंड द यंग दिलजीत इज़ ऑल्सो देयर. सो मतलब वो ट्रांजिशन वाली चीज़ बड़ी मज़े की लग रही है. तो आई रियली लाइक्ड इट. अच्छा, जब हम गानों और मूवीज़ एंड ड्रामास के सजेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर किसी को पॉडकास्ट सुनना है तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ, आजकल मैं बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट सुन रही हूँ. मतलब आई टर्न 36 ना, तो मुझे ऐसा लगता है दैट जब आप मतलब अकॉर्डिंग टू I don't want to say numerology ke hisab se, but I would say that studies about numbers it stays ke jab aapki zindagi mein 35 plus aap ho jate ho na, to tab ek time aata hai jisme आप अपनी लाइफ के उन 7 years में दाखिल हो जाते हो जहाँ पर आप बहुत स्पिरिचुअल बन जाते हो. और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का एक्चुअली वो टाइम चल रहा है जहाँ मैं बहुत स्पिरिचुअल, नॉट इन द सेंस कि मैं बहुत वो हो गई हूँ, लेकिन मतलब नॉट लाइक इन द सेंस कि मैं बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांग हो गई हुई हूँ अपने बिलीव्स के बारे में, या बहुत एक्सप्लिसिट हो गई हूँ अपने बिलीव्स के बारे में. जस्ट दैट कि मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचने लग गई हूँ. दैट्स द थिंग व्हाट आई एम डूइंग आजकल. लाइक मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो गई हूँ, बट आई एम जस्ट क्यूरियस. आई वॉन्ट टू नो अबाउट थिंग्स एंड ऑल दैट. तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट सुन रही होती हूँ. और मुझे फुरकान कुरैशी के व्लॉग्स जो हैं वो बहुत, ब्लॉग्स या दैट्स व्हाट ही कॉल्स देम, बहुत अच्छे लगते हैं. मैं वो सुनती हूँ. इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा आजकल मैंने नई चीज़ शुरू की है दैट बचपन से ये हो रहा है दैट आप तलावत लगाते हो घर में और हम तलावत सुनते हैं, एंड विच इज़ अ

वाली टिप में इंटरेस्टेड हैं तो पूरा का पूरा एक कैपिटल जो है वो एक ही दफ़ा सुनिए, ताकि आपको समझ आए कि यार हो क्या रहा है, बात क्या हो रही है, ताकि उसका जिस्ट समझ आ जाए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कभी बार हम तलावत सुन रहे होते हैं जिसकी अपनी बरकत है, जाहिर सी बात है, लेकिन उसके साथ में ये होता है कि आपका एक रब्त टूट जाता है, तो आपको समझ नहीं आता। मतलब आपको एक लाइन की समझ आती है लेकिन उस लाइन का कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता, तो एक आयत समझ आती है, आया समझ आती है लेकिन उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी चीज़ जब आप एक दफ़ा सुनोगे तो आपको ज़्यादा जो है वो एक मतलब असर होता है इस चीज़ का। तो एक टिप है इफ़ यू वॉन्ट टू, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। दिस इज़ हाउ मैं आजकल चीज़ें जो हैं वो सुन रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट सुनने लग गई हूँ, मेरा ऑब्वियसली रुझान जो है वो ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ है, तो मैं वो सुनती हूँ। लेकिन मैं जब भी ड्राइव कर रही होती हूँ तो मैं कोई ना कोई पॉडकास्ट सुन रही होती हूँ, सॉरी या तो मैं कॉफ़ी पी रही हूँ साथ साथ, सो सॉरी। तो द थिंग इज़ दैट आपको मेरी लाइफ में जब आप आते हो तो आपकी कम से कम आधी गुजर चुकी होती है और आधी रह गई होती है, तो आपको कम एक टाइम मिलता है सेल्फ रिफ्लेक्सियन का, ठीक है। आप सोचते हो कि अच्छा मैं बैठता हूँ और मैंने आधी ज़िंदगी अपने क्या की है, जो आधी रह गई है उसके साथ मुझे क्या करना है, और कुछ ना कुछ तरह से आप स्टेबल भी होते हो, फाइनेंशली भी, दिमाग भी आपका चल रहा होता है, आप मेच्योर भी होते हो, आपको चीज़ें बेहतर समझ आने लग जाती हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट बैठें और सेल्फ रिफ्लेक्सियन करें, आप सोचें कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक क्या किया है, मैं आगे वाली ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ। जर्नलिंग करने की कोशिश करें कि आप सारी अपनी थाट्स जो हैं उसको एक जगह लिखें, क्योंकि अपने दिमाग में जब एक सोच होती है वो अलग तरह से असर करती है, और वही सोच हाथों के ज़रिए जब आप लिख देते हैं और उसको आप टच करना शुरू कर देते हैं और उसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो उसकी सेंस फिर और तरह से बनती है, उसका असर जो है वो और तरह से होता है। तो मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप बैठ के सोचें कि आपको अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए। 10 साल जब मेरी ज़िंदगी के गुजर जाएंगे और जब मैं पीछे मुड़ कर देखूँगा तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो मैं चेंज करना चाहूँगा, वो आप अभी सोचें इस बारे में, और अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाने की कोशिश करें कि 10 साल बाद आप ये ना सोचें कि यार मेरे पास टाइम होता ना तो मैं ये करता। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि अगर मैं 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद की निमरा सोचूंगी ना, तो मुझे होगा कि यार आई शुड हैव एक्सरसाइज्ड मोर, I should have been more active. मतलब active not in the sense of काम, because काम मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, but like in the sense के मैं ज़्यादा अपने साथ टाइम गुजारती और ज़्यादा एक्सरसाइज करती एंड ऑल दैट। ये जो पॉइंट है एक्सरसाइज वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इस पर रहते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ ganz wichtig. Einfach sitzen Sie einfach ruhig im Zimmer, irgendwo im Spielpark oder Park oder einfach da im Garten irgendwo, und überlegen Sie einfach, was Sie in Zukunft machen möchten und die Sachen, die Sie gerne sich ändern möchten und die Sachen, die Sie gerne adaptieren möchten. Einfach Gedanken über sich selbst machen, damit wir gute Entwicklungen in 5 Jahren und nächste ein paar Jahren schauen kann und unser Leben ein bisschen besser machen kann. Ja, so, now I'm going to play a song. Jab wapis aayenge to we are going to talk about hamari khana peena, okay?

हम लोग आ गए हैं वापस, और गाना जो है वो प्रभास की मूवी का है, बट हिंदी में था, तो आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. मैं इश्क तेरा, प्रभास का न्यू सॉन्ग, इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, एंड मे बी किसी मूवी में होएगा, दैट आई डोंट नो, बट आई डोंट माइंड द सॉन्ग, इट्स गुड, आई लाइक इट. या और किसने गाया, सिंगर इज विकाश. हाँ, फेल्ट लाइक अरिजीत, साउंडेड लाइक अरिजीत, बट दैट्स द सैड थिंग. द थिंग इज दैट obviously Vikash also would not want to sing sound like Arijit, but kabhi kabhar hota hai ki jab aap hit ho jate ho to aapka label jo hai wo aapko force karne lag jata hai ki us tarah ka gaao na, wo cheez hit hai aajkal. तो इट्स सैड दैट आप किसी का गाना सुनो और आपको लगे कि ओ अच्छा उसके जैसा साउंड कर रहा है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो जैसा होता है उसको वैसा साउंड करना चाहिए. बट खैर, जी हाँ, कोई बात नहीं. टॉकिंग अबाउट सजेशंस, जो हम बात कर रहे थे, तो एक टोस्टर मूवी है राजकुमार की, इट्स ऑन नेटफ्लिक्स, वो मैं देख रही थी, मतलब देखा नहीं है मैंने, मैं उसका सिर्फ ट्रेलर देखा था. मुझे लगता है कि हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब तक मैं देख लूँगी, तो मैं उसका रिव्यू बेहतर दे सकूँगी. जो ट्रेलर देख के मुझे लग रहा था वो अच्छा लग रहा था, तो आई विल बी वॉचिंग इट. इसके साथ साथ मैंने अवतार मूवी देखी थी, विच वॉज ओकेश, इट वॉज़ वेरी आर्टिस्टिक एंड ऑल, बट इट वॉज़ ओके, मतलब इट वॉज़ नॉट बेस्ट, नॉट गुड, नॉट लाइक दैट, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर आप लोगों को लड़ाई झगड़ा एंड ऑल दीज थिंग्स पसंद हैं तो वो कुछ उस तरह की मूवी थी, लाइक मोर ऑफ लड़ाई झगड़ा एंड मोर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड थिंग्स लाइक दैट. मैंने अपने लड़कों के साथ देखी थी, तो मतलब मेरे बेटे हैं, तो मैंने उनके साथ, अपने हस्बैंड के साथ देखी थी, तो उनको तो ऑब्वियसली सही लगी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इट वॉज ऑल, इट वॉज, आई थिंक आई हैव अ फीलिंग दैट इट इज़ मेड फॉर मैन एंड फॉर बॉयज, नॉट for women, because बहुत ही ज़्यादा conflict and you know लड़ाई झगड़ा एंड ये और वो था और सारा कुछ, तो made by men for men I guess, so it's a weird statement to give, but I did not like not caps lock on like the movie that much, it was okayish. इसके अलावा मैंने कौन सी मूवी देखी है, धुरंधर मैंने नहीं देखी, मुझे कुछ समझ भी नहीं आई, नॉट अप फॉर दैट ड्रामा, एंड सो या, लेकिन जो मुझे अब तक पता लगा है कि इट्स अ वेरी वेल मेड मूवी. आई डोंट नो, अगर आप लोगों ने देखी है और आप मुझे इसके साथ इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए और बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी. मुझे नहीं अच्छी लगी, मतलब अच्छी नहीं का मतलब है कि मेरे अंदर इतनी पेशेंस नहीं है कि मैं इस तरह की मूवी देखूँ बैठ कर, प्रोपेगेंडा मूवीज़. तो और द फनी थिंग इज़ दैट I actually remember this whole thing happening also. So it's not something जो मैंने अपने lifetime में खुद नहीं देखा हुआ. तो जो धुरंधर की story है वो उस backdrop पर है जब I was conscious enough to understand the politics, because I come from a political family in Pakistan, तो मुझे ये चीज़ें समझ आती हैं, तो इसलिए मुझे में इतनी patience नहीं है कि मैं कुछ भी देखूँ. Obviously it's a well made movie without any doubt, good for them, but मैंने नहीं देखी. अगर आप लोगों ने देखी है तो फिर ज़रूर मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा. इसके साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे डाइट, खाने के बारे में. द थिंग इज़ दैट मैं खुद बहुत लापरवाह हूँ अपने खाने के बारे में, तो मुझे पता है दैट कितना बंदा केयरलेस हो जाता है अपने बारे में, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग, जब आप मदर हैं, जब आपको आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत से लोगों की. तो आई वुड जस्ट से दैट सिट डाउन विद समबडी एंड टॉक अबाउट इट, बिकॉज जब आप बात कर रहे होते हैं ना तो आप इतने सिली साउंड करते हैं. दैट मैं किसी को बता रही थी एक दिन कि मैं खाना नहीं बनाती हूँ, नहीं मतलब मैं खाना बनाती हूँ, मैं अपने लिए लंच बॉक्स नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सुबह, मेरे पास इतना सुबह के टाइम नहीं होता कि मैं सलाद बना सकूं. ठीक है, अब दैट बंदी वॉज लाइक, बट सलाद में बनाना क्या होता है, सलाद में चीज़ें काटनी है और अंदर डाल देनी है. तो जब मैंने ये बात कही कि मेरे में इतनी पेशेंस नहीं है कि मैं सुबह सुबह खड़े होकर सब्जियां बनाऊं, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ भी नहीं करना है. सीरियसली मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो बात मैं कर रही हूँ वो कितनी सिली साउंड कर रही है, वो कितनी स्टूपिड साउंड कर रही है. और उसके बाद मैं खुद ही शर्मिंदा हो रही थी, बिकॉज मुझे लगा कि यार ये बात इतनी स्टूपिड है टू से आउट लाउड दैट आई डोंट हैव द टाइम टू कट वेजिटेबल्स. यू डोंट हैव टू कट वेजिटेबल्स, यू कैन जस्ट ग्रैब अ कैरेट एंड गेट इट विद यू, और अ क्यूकम्बर और समथिंग लाइक दैट दैट यू कैन मंच ऑन. एंड देन आई रियलाइज, ओ माई गॉड, दैट साउंड सो सिली. एंड देन आई मेक सुबह को लंच बॉक्स फॉर
my kids. I make dupehar ko khana for my kids. I make raat ko khana for my kids as well and for my family. एंड जब आप ये बात करते हो और उसके बाद आपके मुंह से ये निकलता है कि नहीं यार मैं अपने लिए एक्स्ट्रा खाना नहीं बना सकती बिकॉज मेरे में हिम्मत नहीं है. बट कैसे हिम्मत नहीं है जब आप पूरे टब्बर के लिए खाना तो बना रहे हो. यू नो मैं आपको ये भी है कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ आपके बच्चों की जो हैं वो अच्छे से मीट हों, आप बच्चों को सारा कुछ मिले और जब आप ऑलरेडी वो सारा कुछ कर रहे हो तो फिर आप अपने लिए भी बना सकते हो. तो मुझे ऐसा लगता है, ऑल्दो मैं अपने वजन से खुद बहुत तंग हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार मैं जब बातें आउट लाउड बोलती हूँ तो वो इतनी सिली साउंड करती हैं दैट आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू से दैट अगैन, यू नो. तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ये चीज़ें इतनी सिली साउंड करती हैं तो मैं कर क्यों रही हूँ, यू नो. तो मैंने इसके ऊपर वॉर करना शुरू किया. ऑल दो एकदम से कोई फ़र्क नहीं आता है ऑब्वियसली, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि यार मैं अपने साथ खाना लेकर जाऊँ, मैं अपने साथ कुछ पानी वानी रखूँ या अपने लिए एक कम अज़ कम अपने पास एक बॉटल रखूँ जिसके अंदर मैं खाने शाने जो हैं वो पानी पी सकूँ अपना रेगुलरली. तो इस तरह की चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं हेलो वाओ समथिंग हैपेंड, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ बट समथिंग हैपेंड, सॉरी. हाँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना ख्याल रखूँ और इस तरह की चीज़ें जो हैं जब आप आउट लाउड बोलते हो तो बहुत ही सिली साउंड करती हैं. तो आपको अगर लगता है कि आप इस जंग में अकेले हैं तो आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं. मैं आप लोगों के साथ हूँ. मैं भी उतनी ही मिस्टेक्स करती हूँ जितना एक आम बंदा मिस्टेक्स करता है, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करती हूँ. तो लेट्स जस्ट होप दैट आज के बाद हम लोग सुबह उठकर प्रॉपर तरीके से नाश्ता करने की कोशिश करेंगे है भाई. नट्स वगैरह को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, अपना आयरन लेवल्स का ख्याल रखें. जितना मैं एक नई चीज़ जो मैंने शुरू की थी बहुत देर पहले जो कि मैं अभी नहीं कर रही हूँ बट कर पा रही हूँ, बट दिस इज़ समथिंग दैट आई डू मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दैट जब मैं खाना बनाती हूँ तो उसके अंदर मैं धनिया वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, मैं उसके साथ में पालक भी यूज़ करती हूँ, लाइक बेबी स्पिनच जो आप लोगों को आराम से मिल सकती है बाहर बाजार से, मैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर सकूँ, ताकि ये ना हो कि जी जैसे दाल बनाई है काली दाल तो उसमें मैं छोटा छोटा करके पालक भी डाल देती हूँ. ऑल्दो बहुत ही अजीब कॉम्बो है, लेकिन वो पालक के जितने भी फ़वाद हैं वो दाल के अंदर आ जाते हैं. इसी तरह और भी अगर मैं कोई चिकन बना रही हूँ तो उसके साथ में मैं थोड़ी सी पालक भी डाल देती हूँ, ताकि आयरन लेवल्स जो हैं वो सही रहें. इसी के साथ साथ जब हम खाने का ख्याल रखते हैं तो उसके साथ डॉक्टर के पास जाकर अपने टेस्ट कराना भी बहुत ज़रूरी है. मतलब बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रहें और वो सारी चीज़ें करें जो हम दूसरों को नसीहत करते हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ. क्योंकि अब जब मैं काम करती हूँ तो मैं बहुत ज़रूरी है कि मैं लोगों को सलाह मशवरे दूँ कि उनको अपनी ज़िंदगी जो है वो प्रॉपर तरीके से कैसे चलानी चाहिए, लाइक आई हैव माई लाइफ सॉर्टेड. मतलब मुझे ऐसा लगता है दैट चाहे आप उसको 100% ना पूरा कर सकें, फिर भी एटलीस्ट 40-30% कोशिश करें. और आई थिंक 40-20-30 से बंदा शुरू करता है और आहिस्ता आहिस्ता बंदा उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर जाकर बंदे को लगता है कि चलो थोड़ा बहुत मुझे कुछ समझ आ रही है अपनी लाइफ के बारे में. लेकिन खाने का ख्याल रखें, नट्स लें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, इन सब चीज़ डॉक्टर के पास रेगुलरली ब्लड टेस्ट और इस तरह की चीज़ें कराएँ. और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विवेकू. जैसे मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि मेरी लाइफ में उतनी विवेकिंग नहीं है. तो 3-4 साल बाद, मतलब 10 साल बाद अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँगी तो मुझे होगा कि यार निमरा खाना प्रॉपरली खाना चाहिए था और विवेकिंग ज़्यादा करनी चाहिए थी. तो अभी गर्मी आ रही है, फ्रूलिंग भी आ रहा है, मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि बाहर जाइए और जाकर बस वॉक करें और मज़े से बाहर टाइम स्पेंड करें. जब भी छुट्टी होती है कहीं ना कहीं निकल जाएं और जस्ट लाइक गो फॉर अ हाइक, गो फॉर अ वॉक. हम बहुत आला जगह पर रहते हैं जहाँ पर हमारे पास ये सारी सहूलियात मौजूद हैं, तो उनको वेस्ट करने की बजाय जस्ट लाइक गाने सुने और बाहर निकल जाएं. जब एक काम, जैसे आज मैं अपनी पार्क जो गाड़ी है वो मैंने दूर पार्क की है ताकि मैं थोड़ा सा वॉक कर सकूं, बिकॉज़ पार्किंग तो मुझे हर जगह पे देनी पड़ेगी, लेकिन कम से कम मैं जब दूर पार्क करूंगी तो मैं थोड़ी सी वॉक कर पाऊंगी. और ये नहीं है कि मैं सारा दिन ऑफिस में बैठी हुई थी और रेडियो स्टेशन पर भी आकर मैं ऑफिस में मतलब बैठ गई हूँ. इस तरह की चीज़ें जो है उनका ख्याल कीजिए. इसी नोट के साथ हम लोग अभी शो जो है उसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे. आज का जो शो है वो इस होप के साथ कि जो
कल की पीस टॉक्स हैं उनका कोई हल निकल सके. एंड आई होप कि लोग अपनी ईगोज को पीछे रख के लोगों के बारे में सोचें और लोगों के लिए बेहतर फैसले कर सकें, बिकॉज एक आम बंदा जो है वो ऐसे ही इन सारी टॉक्स में और इन सारे मसलों में पिस जाता है. आई जस्ट रियल जैसे पाकिस्तान भी चाहे दुनिया में जितने बड़े ये कोई तोटम खान बन जाए, लेकिन जब तक आपके अपने घर में लोग खुश नहीं हैं, जब तक आपके अपने घर में लोगों की चीज़ें जो हैं वो अपने कंट्रोल में नहीं हैं, प्राइसेस ज़्यादा हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, मतलब मुल्क के हालात बेहतर नहीं हैं, तो जितने मर्ज़ी पीस टॉक्स आप करवाते रहो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो आई जस्ट होप दैट सैनिटी प्रिवेल्स और जंगें ख़त्म हो सकें और पीस टॉक्स जो हैं उनका कोई नतीजा निकल सके. एंड या दैट्स व्हाट आई विश फॉर. और एंड पे आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अगर आप लोग मुझे फीडबैक भेजना चाहते हैं या किसी टॉपिक के बारे में चाहते हैं आप लोग के मैं बात करूं, तो तरीका बहुत आसान है. रेडियो फैब्रिक की वेबसाइट पे जाइए, जाकर वहां पर प्रोग्राम्स में पाक इंडिया एक्सप्रेस को ढूंढिए. वहां पर जब आप पाक इंडिया एक्सप्रेस पर आएंगे तो मेरी तस्वीर होएगी और उससे जब बिल्कुल नीचे आप आ जाएंगे तो वहां पर आकर आप लोगों को मिलेगा फीडबैक का कॉलम. और फीडबैक के कॉलम में आप मुझे कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब एनीथिंग दैट यू वांट टू say to me. आपके पास अगर टॉपिक्स हैं तो आप टॉपिक्स के बारे में बात कर सकते हैं. अगर आपके पास मतलब कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे सजेशंस भेज सकते हैं. अगर आप लोगों के पास कोई प्लेलिस्ट है जो आप चलाना चाहते हैं, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं. मैंने अभी अपनी वेबसाइट खोल कर देखी और मुझे वहाँ पर फीडबैक, हाँ मिल गया मुझे फीडबैक का कॉलम. ओके. सो जब आप रेडियो फैब्रिक की वेबसाइट पे जाएंगे और प्रोग्राम्स में पाक इंडिया एक्सप्रेस को सर्च करेंगे तो ऊपर सेंडिंग साइटन और फीडबैक, या देर इज़ दिस फीडबैक कॉलम. वहाँ पर जाकर आप लोग फीडबैक लिख सकते हैं कुछ भी किसी भी तरह का और वो मेरे तक पहुँचा दिया जाता है. सो या दैट इज़ इट. और ये था आज का शो. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और नहीं भी पसंद आया तो एक दन दन आता हुआ मैसेज मुझे कीजिए, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. कभी कभार मुझे मैसेजेस आते हैं दैट मैं बहुत अजीब साउंड करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा हंसती हूँ और मेरी बातें करते करते मैं एकदम से बहुत ऊँची बोलने लग जाती हूँ, एंड दैट्स फाइन. सीरियसली दिस काइंड ऑफ फीडबैक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि मैं मुझे पता चल सके कि मैं किस तरह का साउंड करती हूँ, बिकॉज मुझे खुद अपने आप को सुनने की आदत है. तो मैं जो भी छोटे छोटे नॉइंसेस करती हूँ वो मुझे उन चीज़ों की आदत है. तो अगर कोई ये बंदा पॉइंट आउट करता है तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता. तो अगर कोई क्रिटिक्स भी हैं तो सर आंखों पर सिर मत्थे थे. इसी नोट के साथ मैं प्ले करने जा रही हूँ भूत बंगला का गाना, जो कि एक्चुअली भूल भुलैया ही है बट differently made. तो और इसका गाना है आप लोग, और उसी जगह पे शूट भी हुई है. मज़े की बात ये है, इसका एक गाना है, मैं वो चलाने लगी हूँ. आप लोग सुनिए और इन्जॉय कीजिए. मुझे अपनी दुआ में याद रखें और ख्याल रखें अपना, बहुत ज़्यादा अपना, अपने इर्द गिर्द वालों का. लेकिन अपने इर्द गिर्द वालों का आप तभी ख्याल से रख सकते हैं जब आप अपना ख्याल रखेंगे. सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपना ख्याल रखें, खाने में ख्याल रखें, जहन को जितना हो सकता है सोचों से दूर रखने की कोशिश करें, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने की कोशिश करें, ताकि दिमाग और दिल और बॉडी जो है वो सब एक तरफ अलाइन होकर मज़े में एक दूसरे के साथ बेटर फंक्शन कर सके. अपना ख्याल रखिए, क्योंकि कोई दुनिया में आपका ख्याल नहीं रखने वाला, आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा. इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. मैं हूँ निमरा आलम और आप लोग सुन रहे हैं पाक इंडिया एक्सप्रेस. अस्सलाम वालेकुम साल्सबर्ग. जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे आप सबको मेरा दुआ, सलाम और प्यार पहुँचे. जी हाँ, बाय.